बड़ुबागे रात चलत किरत तारा दिए हो राई तम पिछन मुदु माल रक्त रानिय कियला दे कांतोरवे वेड वेलावे रेस पोते बलाई ओहे बैलुआ थोर बुकियाई थोर सुरा पोलाई मेक कोलंब नाम दे येने आपे गाम होंदाई मेवा गया है मद कोलंब इने दैन मेवा देखलात मत हिते ने गेदर यान टाई फिर लोके कियला आवे वैडा सोया गान टाई दैन मेवा देखला मत हिते ने गेदर यान टाई दैन मेवा देखला मत हिते ने गेदर